0: श्रीमानु तुनाई दशम पहा अनु तुनाई दशम हाता लखांडे रेडियो आईटीएन सबे श्रीलंकिया हांडे
1: लखांडे प्रवृत्ति समग्र बाबा सुलक्षणी उदेश्य का इतिहास प्रवृत्ति संस्करणे चंद्रमार सिंह है।